के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफान गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यस्तो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रिचोक प्रोपाइटर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 9861 37744 र 9853577।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले दिउँसो एक बज्यो।

0: Panorama. Baba Costa un indio.
1: Taktaki çirkinlik. Sansele. Naktaki. Biz baba sizde kadınla kaparın önünde kapat. Çirkinlik bir tarafa da roman bağlandı. Yürü bana çoğu sapma tepkiri bağlandı. दिल्ली जाना चाहिए कि ठुलो फ्रेंड मैं सबको नहीं तुझे सीधे उतारने सब एक को कह रहा हूँ जी मैं अपने गांव ना मनो पसी हूँ कहीं गांव में का सब वही मान चाहिए को लाए रात मेरी काम है तेरी बाबा देगा था अरे अरे मरे भी गांव